0: preventing organized cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
1: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वही अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है। उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है, और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे, और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है। लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा, और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है। उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं। 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है। दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है, एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं, और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है, तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है, और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है, और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है, देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी, तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
0: एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वॉज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 करोड़ इज द प्राइस दैट इज बींग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज, एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi, where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol, after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now, Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shivsena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shakeup in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
2: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर, पांच से छह सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक।
3: समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियां तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, यही काम चल रहा होता
4: है। संकट नहीं है,
3: संकट नहीं है। अगर संकट आता है तो संकट को निपटा
5: लें। ऑपरेशन टाइगर की जो खबर आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
6: ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मीडिया में साल डेढ़ साल से ये बातें इंटरमीडियंटली आते रहती हैं और उसको उसकाया जाता है, उसको लाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स हैव बीन कंडक्टेड बाय उद्धव जी, कन्वीन बाय उद्धव जी एंड एवरीवन अटेंडेड। In the last meeting, four of us were there in person. After that, five of them were there. They were on video conferencing. They couldn't come to Madhusri in Mumbai because they had their individual engagements which were fixed much earlier. So they played और वो integrity जो pledge करना है वो बार बार कितनी बार करेंगे वो।
0: Breaking news coming in, and this is in regards to Prime Minister Narendra Modi's statement at G7. He raised the seafarers' safety issue at G7. This comes after an attack on the Indian vessel where three Indians were killed on board a ship in the Strait of Hormuz when a U.S. strike decimated that ship. These are the visuals of that ship which was destroyed, after which three Indians were killed. And now Prime Minister Narendra Modi reiterating how it is important to ensure safety of seafarers amid these tumultuous times. The Strait of Hormuz must be safe. This is what is being urged by Narendra Modi. Remember, this was when Donald Trump, the US president, was sitting right in front of Narendra Modi when the two discussed it. And before also the G7 working sessions began, Donald Trump did a handshake with the Narendra Modi and the two were seen discussing something for a very brief time, after which this statement is of utmost importance of how India is putting forward its stand without any concern about the geopolitical tensions that are simmering in the area. My colleague Aditya Raj Kaul is also with me to detail and highlight the nuances of this statement coming in from Prime Minister Narendra Modi and the timing of it. Yes, Aditya.
7: Well, yes, it's a very significant statement coming in from Prime Minister Narendra Modi, and this was his speech at one of the sessions in G7 when all the G7 members were sitting there, including the US President Donald Trump. Prime Minister Modi raising the issue of the safety and security of the seafarers who are traveling across the Strait of Hormuz amid the geopolitical tension in the region over the last 3.5 months. And this comes just days after three Indian nationals were killed in that attack by the US Navy on a commercial vessel in that entire area. Remember, India had also summoned twice in 48 hours top US diplomat Jason Meeks, clearly highlighting and protesting this development. Three innocent lives were lost from India in that attack. And now Prime Minister Narendra Modi saying that the world needs to ensure the safety and security of seafarers in that region. He welcomed the West Asia peace deal that has been achieved and will be signed on Friday, the 19th of June, but also highlighted how the blockage of the Strait of Hormuz and the West Asia crisis has led to an economic turbulence affecting each and every country, and prayed that there is sustained dialogue so that there is peace that returns. So Prime Minister Narendra Modi of India highlighting at the highest level the issue of the seafarers, which is of utmost importance. There's been a lot of anger, Aditi, across India.

0: where the software engineer meets the cool UI/UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।

0: the Udhav camp have struggled to reach some of their own MPs. We're told some phones were switched off, others were reportedly not reachable. And a crucial meeting of MPs is now expected in Delhi, while a separate meeting of MLAs has been called for the 22nd of June. Eknath Shinde, amidst all of this, has stayed silent, but his camp insists that those backing his leadership will eventually shift. Meanwhile, the BJP is eyeing a further boost to NDA numbers in Parliament, days after the 20 TMC rebel MPs also extended their support. We've got crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
1: Currently in Delhi?
2: No, I'm in Mumbai.
1: Okay. And sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
2: Tired of the press and tired of all the speculations.
1: Okay.
2: What is going to, what if something is to happen, it will happen. What is, what, you and me, just wasting our time is no point.
1: No, sir. Clearly you have a point. That Eknath Shinde is in Delhi and there are sources say that they are going to meet all the rebel MPs from Shiv Sena UBT.
2: I've got no news about it. I'm tired of all the media calls. So sir, can we say that
1: not all MPs are in touch with Shiv Sena and yes.
2: Yeah.
1: But sir, as an MP, it's being told that you guys are unhappy with Uddhav Thackeray and his functioning. What will you comment on that?
2: Is any human happy with anything?
1: Right.
2: General human tendency to be not happy. If I get the invitation, I'll think over it.
1: If you get the invitation to what, join Shiv Sena?
2: I'm not going to invitation. They should at least invite na. Begani hai thi main Abdullah Diwana. Why should I dance in another's wedding?
1: Okay.
2: Let me be invited na. Why should I go and dance without getting invited?
1: Sir, can we say that the rest of them have been invited?
2: I don't know. I'm not in touch with them anyone.
1: Okay.
2: They are, everybody is busy. All phones are, everybody's phone is busy with press people only na.
1: Okay.
2: Yeah.
1: But is it true that there's unhappiness in the MPs?
2: How would I know? I'm busy answering calls from the media. Okay. If I'm not available, if I don't pick up the call, then also everybody will say, unavailable. I'm speaking to you. Sanjay Rauji is in charge and Arvind Samanji is in charge of our parliamentary affairs. He's our leader. I'm not authorized to speak on it. They are our party leaders. They will speak what is to be done. You can contact them.
3: एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की खबर आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हमारे नेता अभी संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बताइए, 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि शिवसेना हमारी असली है, धनुष्बाण हमारा चुनाव चिन्ह है। अब तक उसका फैसला आया नहीं। तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। अब आप सोचिए कि 9 सांसद हमारे पास हैं, 2 साल से हैं, हमारे नाम पर जीत के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पर, हमारे नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आए हैं, और अब पता चल रहा है कि सब दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
4: एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि अब बारी अगली शिवसेना की है, शिवसेना के 6 सांसद टूट के, 7 सांसद टूट के वो एक नया गुट बना देंगे। कितनी बार तोड़ेंगे शिवसेना को?
5: ये आपके स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
4: अच्छा, जहाँ जहाँ पार्टी टूट रही है ना, आप वहाँ वहाँ प्रभारी रहे, महाराष्ट्र में भी आप प्रभारी रहे, वहाँ शिवसेना टूट रही है, बंगाल में आप प्रभारी रहे, वहाँ TMC टूट रही है, इससे पहले भी आप कई राज्यों में प्रभारी रहे, वहाँ तो आपने सरकार बना ही दी, यहाँ तो सरकार बनाने के बाद अब विपक्ष पे आफत आ गई।
5: या हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, जन समर्थन में विश्वास करते हैं। राजनीति का जो ध्येय है, वो राजनीति का ध्येय भारत में राष्ट्रवादी विचार के साथ भारत को बड़ा बनाने का विषय है। हम अपने ध्येय पे काम करते हैं, बाकी नहीं।
6: ये बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में हो रहा है, इसकी वजह से एक अट्रैक्शन है, शिंदे साहब के बारे में अट्रैक्शन है, हमारी सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में है महाराष्ट्र में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, शिंदे साहब अच्छी तरह से उनको साथ दे रहे हैं, पवार मैडम साथ दे रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं।

0: expected to tell the speaker today? And what protection is the UBD camp seeking?
1: Well, yesterday it was Arvind Sawant who wrote a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla stating that any sort of letter if comes from any MP claiming that they have a separate group or they are now seeking to part away from the Shiv Sena UBT, which is the political party which has 9 MPs registered under their party symbol, should not be entertained because it is the party chief whip and party president who decides as to what needs to be done as far as the party activities are concerned. The timing, the time has been sought from the Lok Sabha Speaker at 11 a.m. The sources have confirmed to us that Lok Sabha Speaker Om Birla has given appropriate time as far as possible close to 11 a.m. To come at his residence and to have a word as far as their grievances are concerned. It is, at 11 a.m., at least 5 to 6 MPs has been claimed by the Uddhav-led party faction will be going in a delegation to meet the Lok Sabha Speaker and will demand that, both parties should be heard if any sort of letter comes from the Eknath Shinde faction as well. Now, the sources earlier indicated that it is the Eknath Shinde faction who had already approached the Lok Sabha Speaker, but they are waiting for the numbers to gather with them as far as what decision they need to take. So, a very important meeting coming up as far as Lok Sabha Speaker Om Birla with the Uddhav faction MPs are concerned, possibly at around 11 a.m.
0: We'll continue to track all the latest details with you, Aishwarya. Thanks so much. We also have a reaction from Rajabhau Vajay, who my colleague Tejashri Purandare actually just had a word with Rajabhau about a few moments ago regarding this so-called Operation Tiger and the future of the Uddhav camp. Here's what they told NDTV.
2: राजाभाव वाजे बोलता है सर मी तेजश्री बोलते एनडीटीवी वरून सर बहुत सारे स्पेक्युलेशन चल रहे हैं देर आर लॉट ऑफ न्यूज एंड स्टोरीज कमिंग इन दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू जॉइन टूडे एंड यू आर गोइंग टू मीट लोकसभा स्पीकर एंड यू आर गोइंग टू मर्ज विद एकनाथ शिंदे फैक्शन
3: आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट
2: सर बट इज इट करेक्ट कि आप जाने वाले हैं
3: मैं दिल्ली जा रहा हूँ मैडम मैं मेरा मीटिंग है कोई मैं 3 बजे आज मीटिंग है मैं वो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मैं अभी रेलवे में हूँ ट्रेन में हूँ
2: लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आप लोग सब इनकम्युनिकेट हो गए किसी से बात नहीं कर रहे हैं और आप लोग रात को मिले और आपकी बात भी हुई रात को एकनाथ शिंदे से अच्छा क्योंकि यहाँ पर संजय राउत जी कह रहे हैं कि आप लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर एकनाथ शिंदे कह एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो कह रहे हैं आप लोग आ रहे हैं 7 आंकड़ा दे रहे हैं और उसमें आपका भी नाम है
3: उनके तरफ नहीं जा रहा हूँ ना मैं मेरे काम के लिए जा रहा हूँ
2: तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं क्या आप पार्टी नहीं बदल रहे हैं अपनी
3: नहीं मैं पार्टी नहीं बदल
2: तो ये आपका नाम इसमें क्यों चल रहा है दादा फिर
3: मुझे क्या मालूम है भैया मुझे क्यों पूछ रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ मैं बोल सकता हूँ बाकी क्यों नाम चल रहा है अभी मैं क्या कैसे बता सकता हूँ
2: भाव आपको भी क्या ऑफर दिया गया था
3: नहीं मेरे पास कोई आया नहीं आज तक मैं किसी के पास गया नहीं
2: आपको कोई नहीं कांटेक्ट किया किसी ने भी
3: मेरे कांटेक्ट में कोई भी नहीं आज तक नहीं
2: तो आई कैन से दिस दैट यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांग विद उद्धव बाला साहेब ठाकरेज टीम
3: यस मैडम
2: ऑल राइट तो सर दिल्ली में आप कितनी बजे आएंगे आज
3: अभी ट्रेन पहुंचेगी तो आ जाएंगे
2: और आज आपके आने का पर्पस आपका विजिट आई मीन व्हाट इज योर पर्पस टू विजिट हियर टुडे इन दिल्ली
3: मैडम आई एम अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन इंडस्ट्रीज एंड आई हैव अ मीटिंग एट 3 o'clock इन पार्लियामेंट हॉल दैट्स व्हाई आई एम कमिंग दैट्स व्हाई प्रोग्राम आई एम नॉट कमिंग देयर फॉर एनी अदर पर्पस
2: तो आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है क्या सर
3: पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग
2: आज नहीं है ठीक है सर थैंक यू सो मच क्योंकि आपका नाम चल रहा था इसलिए हम एक बार कंफर्मेशन चाह रहे थे आपने कंफर्म कर दिया कि आप नहीं जाएंगे आप आज क्या दिल्ली में आकर संजय राउत जी या अरविंद सावंत जी या फिर
3: मैं तो मीटिंग में आया हूँ 3 बजे मेरी मीटिंग है उसके पहले उनसे बात करके उनके पास अगर वो बोलते हैं क्या बुलाएंगे तो मैं जा क्या आऊंगा उनके पास 3 बजे तो मीटिंग को जाना है
2: जी पर उससे पहले आप मिल सकते हैं लोकसभा स्पीकर से मिलने का कोई टाइम मांगा है आपने
3: नहीं मेरा कुछ काम ही नहीं है ना मैडम लोकसभा स्पीकर से मेरा क्या काम
2: तो आप ये सार्वजनिक रूप से सारी बातों को डिनाई कर रहे हैं कि यू आर नॉट ज्वाइनिंग शिंदे सेना और एनडीए
3: मैडम

हमने कहा है कि ये शिवसेना हमारी असली है, धनुष्बाण हमारा चुनाव चिन्ह है। अब तक उसका फैसला आया नहीं, तब तक 2026 में पुनः एक बार

0: एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर, उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं।
1: एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि अब बारी अगली शिवसेना की है, शिवसेना के 6 सांसद टूट के, 7 सांसद टूट के वो एक नया गुट बना देंगे। कितनी बार तोड़ेंगे शिवसेना को?
2: ये आपके स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: अच्छा, जहाँ जहाँ पार्टी टूट रही है ना, आप वहाँ वहाँ प्रभारी रहे, महाराष्ट्र में भी आप प्रभारी रहे, वहाँ शिवसेना टूट रही है, बंगाल में आप प्रभारी रहे, वहाँ टीएमसी टूट रही है, इससे पहले भी आप कई राज्यों में प्रभारी रहे, वहाँ तो आपने सरकार बना ही दी, यहाँ तो सरकार बनाने के बाद अब विपक्ष पे आफत आ गई।
2: या हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, जन समर्थन में विश्वास करते हैं। राजनीति का जो ध्येय है, वो राजनीति का ध्येय भारत में राष्ट्रवादी विचार के साथ भारत को बड़ा बनाने का विषय है। हम अपने ध्येय पे काम करते हैं, बाकी नहीं।
3: ये देखिए, ऑपरेशन टाइगर जो हो रहा है तो खुद ओबीटी की तरफ से ही हो रहा है। उसका ये है कि सभी सांसद, सभी विधायक, ये ओबीटी के नेताओं का जो रवैया है, बार बार वो लोगों के ऊपर शक कर किया जाता है, बार बार वो लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं कि इनसे बात नहीं करना, इनसे नहीं मिलना, किसी के घर पे खाना का दावत भी आई तो उसके यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं जाना, तो इससे भी ये लोग बहुत तंग आ चुके हैं। तो इससे ये लोग बहुत नाराज है, बहुत बड़ा असंतोष ओबीटी के सभी सांसद और विधायकों में भी है।
4: आज की तारीख में जितने भी विपक्षी दल के जनप्रतिनिधि, उनको अपना भविष्य अपने दलों में दिखता नहीं है। टीएमसी हो, पुनः उद्धव जी की पार्टी में जिस तरीके से चल रहा, आम आदमी पार्टी हो, धीरे धीरे करके ना जनप्रतिनिधियों का विश्वास अपने दलों में है, ना जनता का विश्वास अब उनमें रहा। देखिए, ये बात सत्य है। मैंने कुछ दिन पहले एनडीए की बैठक में भी इस बात को मैंने कहा था कि 2029 में एक बार फिर से हम लोग मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं।
5: यूबीटी के सांसद उद्धव ठाकरे जी से नाराज है। सांसद ही क्यों, विधायक नाराज है, उनके कॉरपोरेटर्स नाराज है, हर एक कार्यकर्ता नाराज है, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। इसके बारे में उनका रीजन क्या, हमसे पूछने बजाय उनको पूछना चाहिए थे। हम क्या उसका रीजन बताएंगे? अगर एक सांसद अपने मतदार संघ के बारे में जो कुछ कठिनाई है, अगर आयुष मंत्रालय के हमारे मिनिस्टर को मिलता है तो उसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र के मंत्री है, उनके मतदार संघ को कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो लेके गए होंगे उनके पास।
6: ऑलराइट, एट दिस स्टेज लेट्स जस्ट लुक एट व्हाई द रिबेलियन चैटर रिफ्यूजेस टू डाई डिस्पाइट रिपीटेड डिनायल्स फ्रॉम द उद्धव कैंप। The claims you're about to see are based on sources. They haven't been publicly confirmed by the MPs concerned. But, you know, if accurate, they point to a common thread running through the alleged grievances. Not ideology, not policy, but leadership engagement. According to our sources, one MP remains deeply upset over a personal tragedy. His wife reportedly passed away while Uddhav Thackeray was traveling. The MP is said to have expected a call or even personal outreach from the party chief, but felt disappointed when that didn't happen. Sources also claim the gesture that stayed with him instead was a condolence call from Union Home Minister Amit Shah. A second MP's grievance highlights that is also said to be personal, actually. After suffering a serious leg injury in an accident, sources say he received support and outreach from leaders in the ruling alliance, as in Eknath Shinde and Devendra Fadnavis. The perception that the party leadership did not engage sufficiently during a difficult period is said to have contributed to his dissatisfaction. And then there's a third grievance too, which is organizational and financial. As per our sources, an MP who spent heavily during local body elections approached the leadership for assistance, but did not receive the support he expected. Sources

0: short while last evening he embarked on a Rajdhani Express towards Delhi. In a short while he will be reaching Delhi, and then it is likely that he will make his stand clear whether he too is joining the rebel camp or he'll remain loyal to Uddhav Thackeray. To comply with the anti-defection law, it is necessary that the rebel camp should have at least 6 number of MPs, and right now what we get to know is that only 5 MPs are confirming their alignment with Eknath Shinde's camp, although they have not given any formal soundbite, or they have not
1: coming in. Jitendra, hold on to that thought. We will come back to you and Aishwarya both, but let's just talk about more breaking news coming out of Maharashtra. UVT MP Sanjay Raut, who's spoken with NDTV, and speaking to NDTV, in fact, Sanjay Raut here in the national capital spoke with my colleague Aishwarya Jain, saying that Uddhav Thackeray has stood by the MPs, and Raut has gone ahead and said that the rebels will not get the numbers that they require, and the rebels flew to Delhi in a chartered plane. That's the claim that's being made. We have Tejri, my colleague, joining us. Tejri, you know, by saying, you know, he spoke with Aishwarya, our colleague, earlier, saying this is Balasaheb Thackeray's party, and now making claims that, you know, whether, you know, the amount of money that's being offered, and that they were, you know, brought in a chartered plane, saying that these people didn't have any money and they've risen to the ranks that they have only because of the party that they belong to.
2: Willis, absolutely, that's a big breaking news that we are bringing you for the viewers as well. In fact, that before this very important press conference, Sanjay Raut has exclusively spoken to NDTV, and he has stated that it is nothing but just a money game that the BJP has been trying to play. He has also stated that BJP is trying to poach all their MLA MPs, but also he has stated that they do not have the numbers as of now. Let them say whatever they want to, let them speculate what they want to, but he believes that all the MPs still stand strong with Uddhav Balasaheb Thackeray, and perhaps that is why this very important Parliament Party meeting has been called tomorrow at 11 a.m. That meeting is also very much important. Needs to be seen that what happens inside this meeting, but also let me show you the visuals as well of the press conference. So that is all set to take place in just some time from now, where Arvind Samant will also be the part, Anil Desai will also be the part of this press conference. Remember that no other MP as of now is joining as early in the morning, and yesterday night also we were speculating when the news came in about press conference that there is a possibility of show of strength over here at the residence of Sanjay Raut, but there is no such possibility as of now. In fact, Sanjay Raut has again claimed that he is very much confident and sure that no MP is going anywhere, all MPs stand strong with him. This, in fact, he has spoken exclusively to NDTV just before his very important press conference. Also, let me show you these pictures of this press conference as well. This is also very much important. And also, let us talk about what Sanjay Raut has spoken while speaking exclusively to NDTV. He has stated that Uddhav Thackeray has worked a lot for every MP and has stood every time for them. And the rebels will not get the numbers they want, and they will keep on struggling for numbers. This they have been doing since long. But still, the MPs have been standing strong with Uddhav Balasaheb Thackeray. All eyes on this press conference. We'll be getting you all the updates from the ground zero.
1: Tejri, stay on with us as we talk about the speculations doing the rounds as far as Operation Tiger that continues to be in motion, with Eknath Shinde's camp claiming that as many as 6 of the 9 Uddhav Thackeray camp MPs could possibly be switching sides. Amid the reports, a parliamentary party meeting of the Shiv Sena UBT has been called in the parliament, and all MPs have been asked to come for the meeting. Let's get
3: phone call. आपको आया था क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं, और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं, और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है.
4: मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं.
3: आपको कॉल आया था?
4: नहीं, किसी का नहीं है. शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं.
3: लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे?
4: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है. मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला.
3: दो दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, कुछ लोग पहुँचे कुछ नहीं पहुँचे. उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं. उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था?
4: नहीं कुछ नहीं, वैसे तो चार फिजिकली वो बैठक में थे और पांच लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी।
3: एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो व्हिप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या
4: मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक। मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं, मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ। हाँ। अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में।
3: इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे?
4: मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूँ, कल भी रहूंगा, बस।
3: तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे?
4: मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है।
3: अच्छा अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने?
4: मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो ना।
3: कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे?
4: नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है, अभी मैं तो साहब के साथ हूँ तो मैं उनके साथ रहूंगा।
3: संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए, आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था?
4: मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई बात ही नहीं हुई तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर, मेरे से बात ही नहीं हुई।
3: जो लोग छोड़ करके जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
4: मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, उद्धव जी उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कहना है तो वो कहेंगे, मैं क्या कहूँ।
3: क्या पार्टी में नाराजगी थी?
4: नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं तो अभी यहाँ हूँ और उनके साथ ही रहूंगा।
3: सर थोड़क्यात मराठी करूया, सर तुम्ही इथं आला आहात, मुंबई वरन नाशिक वरन दिल्ली आला आहात, काय उद्देश आहे? म्हटलं जात आहे की
1: करंटली इन दिल्ली।
5: No, I'm in Mumbai.
1: Okay. And sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
5: Tired of the press and tired of all the speculations.
1: Okay.
5: What if something is to happen, it will happen. You and me,
1: right.
5: Just wasting our time is no point.
1: No, sir. Yeah. Clearly you have a point. That Eknath Shinde is in Delhi and there are sources say that they are going to meet all the rebel MPs from Shiv Sena UBT.
5: I've got no news about it. I'm tired of all the media calls on me.
1: So sir, can we say that not all MPs are in touch with Shiv Sena and yes.
5: Yeah.
1: But as an MP, it's being told that you guys are unhappy with Uddhav Thackeray and his functioning. What will you comment on that?
5: Is any human happy with anything?
1: Right.
5: General human tendency to be not happy.
6: Raja Bhav Vaze bolta hai.
7: Bhav bolte.
6: Sir, mi Techri bolte NDTV Varun.
7: Bola.
6: Sir, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं, देर आर लॉट ऑफ न्यूज एंड स्टोरीज कमिंग इन दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू जॉइन टूडे एंड यू आर गोइंग टू मीट लोकसभा स्पीकर एंड यू आर गोइंग टू मर्ज विद एकनाथ शिंदे फैक्शन।
7: आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट
6: सो, बट इज इट करेक्ट कि आप जाने वाले हैं?
7: मैं दिल्ली जा रहा हूँ मैडम, मैं मेरा मिट्टी है, कोई 3 बजे आज मीटिंग है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी रेलवे में हूँ, ट्रेन में हूँ।
6: लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आप लोग सब इनकम्युनिकेट हो गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और आप लोग रात को मिले और आपकी बात भी हुई रात को एकनाथ शिंदे से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत जी कह रहे हैं कि आप लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो कह रहे हैं आप लोग आ रहे हैं, 7 आंकड़ा दे रहे और उसमें आपका भी नाम है। तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं क्या, पार्टी नहीं बदल रहे हैं अपनी?
7: मैं पुणे में हूँ, पुणे में।
8: अच्छा, पुणे में ही है। तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है सर, उसमें आप दिल्ली आएंगे या अभी वहीं रहेंगे आप?
7: मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्यों चला रहा है आप सब लोग।
8: अच्छा, तो आप
7: पुणे में
8: हैं? आप पुणे में ही हैं। आप उद्धव,
7: मैं आपके माध्यम से ही मैं जान पा रहा हूँ कि 2 MP आए, 3 MP आए, मैं तो पुणे।
8: अच्छा, आप पुणे में ही?
7: आपकी वजह से क्या हुआ पता भी नहीं चल रहा, कौन सा न्यूज सही है और कौन सा गलत है, सब न्यूज ही चला रहे।
8: तो सर अभी आपका क्लियरिटी क्या है, आप उद्धव के साथ ही हैं या आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो सही
9: है? अभी फिलहाल मेरे पिताजी का जो मर्डर केस है
8: जी,
9: उसका डिसीजन आने वाला है 20 तारीख को, तो उसके

0: Let's cut across to a press conference being held by Sanjay Raut of the Uddhav Thackeray Shiv Sena faction, saying that Operation Tiger is not easy and our leaders were offered 50 crores.
1: Arvind Sawant ji ne aur Anil Desai ji ne group jari kiya. Kal hamari parliamentary meeting hai dal ki 11 baje. Om Birla ji ko bhi hamare Arvind Sawant ji ne letter likha hai. Wo bhi aap samajh lijiye. Aur hum ab Delhi mein hai aur Delhi mein rahenge. Arvind ji aap zara bataiye.
2: पहली बार तो आदरणीय
3: वी आर इन दिल्ली एंड विल रिमेन इन दिल्ली.
1: देखिए अभी तक तो मैं मानता हूँ सब क्या हमारा सरकार का किसी ने लेटर दिया है.
3: सो फार आई बिलीव दैट ग्रुप इज वन.
1: लेकिन
3: whether anybody has given or not given the letter, we have got to know from you. On 14 June, we had a meeting at the residence of Uddhav Thackeray Matoshri,
1: where
3: the MPs said that we are with the party. We are not going anywhere after leaving you. And one of the MPs took oath in the name of Sai Baba. Another one took name in the oath, took oath in the name of Ma Bhavani. Somebody took oath in the name of his mother. Shiv Sena is like mother to all of us.
1: उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये पार्टी है. मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी और बाला साहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है. अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है. और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे पहले पैसा हाथ में दे दो वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया नांदेड़ से पुणे से तीन जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़ा.
4: और कितने लोगों को दिया
1: गया? आ जाएगा. तो अभी अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है. हमने सबको व्हिप दिया है
4: जारी किया है
1: अरविंद जी ने और अनिल जी ने और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है. मीटिंग के बाद हम तय करेंगे. लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है अरविंद जी ने गट नेता है तो उनके बाद हम देखेंगे. अरविंद जी जरा बताइए आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणताय किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या. खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे. ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबर आहे. आता ते ट्रेनमधनं उतरले राजधानी एक्सप्रेसमधून मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं. याला आम्ही निष्ठा म्हणतो श्रद्धा म्हणतो. अहो खासदार का आमदार का इथं आणि जातात. आज आम्ही खासदार आहोत उद्या नसू पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहे हे नाही डोंट कट एकच. हा हे लोक जो है बेईमान लोक है. ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है ऐसा अब लगने लगा है. मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा.
4: नहीं नहीं राऊत साहब एकनाथ शिंदे दिल्ली मध्ये आहेत आणि हे सहा खासदार ही दिल्लीत आहेत असं कळतंय. ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता अमित शहा यांची भेट.
1: बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोग लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहित आहे. अनिलजी
2: या संदर्भात एक महत्वाचं आवश्यक आहे की बात ऐसी है की आदरणीय हमारे संजय राऊत साहब ने सारी बातें बताई हैं. अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे. हमारे अनिल देसाई उसमें ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर. बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा. ये आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है. किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे ये खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे, बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा. अब ये मीडिया में जो बात फैलावी, जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहां 4-6 लोग है. हम तो सामने खड़े बैठे हैं. लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है, क्योंकि पिछली बार हमने कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं. हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है. किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं. लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है. पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है. हमारी पार्टी वहां तो है. अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारे लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है. उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा, किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ. ये जो आजाद चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है. लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में. देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है. कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो. तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही इतना संविधान से खिलवाड़. जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ऐसा कह रहे नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया. बिस्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा. ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहे ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलक रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया. और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो उस चिट्ठी में लिखा है. कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा. पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं. पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है. हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी. इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी तो हमने उसका व्हीप भी जारी कर दिया.
4: अनुपस्थित राहतात पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात.
2: हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहे आत्ता, म्हणून मी आलो नाही. पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबाची, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले की आमच्या मागे नाही बोलले, आम्ही सगळे साक्ष होतो. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स साहेबाची बोलले, त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती
1: नाही. आता उसमें जो
4: लीगल येऊ शकत नाही पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात.
1: नाही सांगतो ना, सांगतो आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे हे सोपं नाही या प्रकरण. परत सांगतो मी, कोणाला वाटत असेल की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील कोणी, काय व्यवहार केले असतील, कोणी मेडिकल कॉलेज घेतलंय, कोणी अमुक काय घेतलंय, हा एवढं सोपं नाही. याला खूप मोठे कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये होईल ती मला असं वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकतील.
5: क्या आपने स्पीकर से मिलने का समय मांगा है?
6: और क्या
1: नहीं नहीं अनिल देसाई की बात कर
7: सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है? और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है, वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम। और उसी के तरह शिवसेना संसदीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसद भवन में, संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है। और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुनिए सुनिए तो सही, ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया के तरफ से ही आ रहा है, मीडिया के तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया के तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है।

0: उनका खून पसीना बहा है, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया, और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठे, अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ, दूसरी बात है कि ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं, ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी और बाळासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए।
1: मैं आया हूं इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है, मैं किसी के साथ मिला नहीं हूं और मैं मुझे क्यों मिला नहीं।
2: क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था?
1: मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं।
2: आपको कॉल आया था?
1: नहीं, किसी का नहीं आया था, शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं।
2: लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे?
1: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला।
3: Of course, that was Rajbhau Waje there, you know, denying those claims that are being made. But NDTV also spoke to other rebel MPs. Let's listen in to what they're saying at this particular point in time.
4: Currently in Delhi?
5: No, I'm in Mumbai.
4: Okay. And sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
5: Tired of the press and tired of all the speculations.
4: Okay.
5: What if something is to happen, it will happen. What is what you and me is
4: right.
5: Just wasting our time is no point.
4: No, yeah. Sir. Clearly you have a point. That Eknath Shinde is in Delhi and there are sources say that they're going to meet all the rebel MPs from Shiv Sena UBT.
5: I don't know, I've got no news about it. I'm tired of all the media calls.
4: So, sir, can we say that that not all MPs are in touch with Shiv Sena? As an MP, it's being told that you guys are unhappy with Uddhav Thackeray and his functioning. What will you comment on that?
5: Is any human happy with anything?
6: अच्छा, पुणे में ही है तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है सर, उसमें आप दिल्ली आएंगे या अभी वहीं रहेंगे आप?
5: मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्यों चला रहे आप सब लोग।
6: अच्छा, तो आप
5: पुणे में?
6: आप पुणे में ही है? आप उद्धव,
5: मैं आपके माध्यम से ही मैं जान पा रहा हूँ कि दो MP आए, तीन MP आए, मैं तो पुणे।
6: अच्छा, आप पुणे में ही?
5: आपकी वजह से क्या हुआ पता भी नहीं चल रहा, कौन सा न्यूज सही है कौन सा गलत है, न्यूज चला रही हुई।
6: तो सर, अभी आपका क्लियरिटी क्या है, आप उद्धव के साथ ही हैं या आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो सही है?
5: अभी फिलहाल मेरे पिताजी का जो मर्डर केस है
6: जी,
5: उसका डिसीजन आने वाला है 20 तारीख को, उसके इसमें हूँ।
6: अच्छा, लेकिन पार्टी के साथ ही है अभी या?
3: Let's just get you more political reactions coming about. What is the Shiv Sena really saying on the matter? Listen in.
7: जो शिवसेना के जो रिबेल में है, जो यूबीटी सेना के जो भी पार्टी स्विच करने की इनकी बात चल रही है आपके साथ?
8: अच्छा, अभी कहाँ दिख रहे तुम?
7: सर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली भी आए हुए, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे के घर पे मिलेंगे भी। और
8: मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में।
7: सर, ये संजय राव जी ने ये भी बोल दिया कि 15 करोड़ दिए जा रहे हैं इनको पार्टी स्विच करने के लिए।
8: संजय राव तो रोज अलग अलग बातें कह रहे हैं ना, कल रात को 15 करोड़ बोला, आज कुछ 50 करोड़ बोल रहा है।
7: ऐसी से फिर आप कह रहे हैं कि कोई टॉक्स ही नहीं हो रही है?
8: उसे तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, ऐसी तो वो 2 साल से ये खबरें आ रही है कि बाबा ये लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में।
7: सर फिर वो जो ऑपरेशन टाइगर की रूमर्स हैं उस पर आप क्या कहेंगे?
8: वो तो 2 साल से चल रहा है ना, रोज न्यूज में आ रहा है, हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ ना।
7: अच्छा ये भी सर फिर आ रही थी न्यूज की उद्धव ठाकरे की लीडरशिप से
8: ऐसे ही वही हो रहेंगे वो संजय राउत और वो अरविंद सावंत को मालूम जो कुछ सुबह से चालू है।
7: अच्छा आपकी भी इंटरनल कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं हो रही है?
8: नहीं नहीं नहीं इंटरनल डिस्कशन कुछ भी नहीं।
7: तो जो दिल्ली की मीटिंग्स हैं जो सारे यहाँ पे आए हुए हैं?
8: नहीं नहीं नहीं कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में।
7: अच्छा तो मौजूद है किसी पे भी कोई अभी बातचीत आपके साथ?
8: कुछ भी नहीं, तो 2 साल से चल रहे हैं ना, 1.5-2 साल से रोज न्यूज आती है इसी तरह की, वैसी भी आज भी वैसी ही रहेगी न्यूज़, ऐसा मुझे लग रहा है।
7: सर आप कह रहे हैं 2 साल से चल रहा है, इसका कोई रीजन है कि ऐसे क्यों चल रहा है ये? पहले भी हमने देखा था 2022 में
8: जो यूबीटी पार्टी है उसमें जो अनबन चालू है वहां से लोग खुश नहीं है, तो ऐसी न्यूज आ रही है।
9: संजय राउत ये सब बौखला गए लोग है, एक तरफ से हमारे आम खासदार हमारे एमपी फूटे ने ऐसा कहते हैं, एक तरफ से उनको गाली देते हैं, कभी बोलते हैं वो बीके गए, ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही, अभी पता नहीं कल क्या होगा ये हमें भी पता नहीं है, कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले दौर पे सामने आने वाली।
10: भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे, उद्धव जी जाने और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे जी जाने, भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गली से, इसलिए इसका रिलेशन केवल उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी से है, तो बीजेपी उसको क्यों घसीटे बीजेपी को?
3: Let's just also talk about those 6 Uddhav Thackeray faction MPs who are likely to be switching sides and those speculations that are doing the rounds. To begin with, we have Sanjay Dina Patil there who is believed to be wanting to switch sides, the one who has been offered. Do remember Sanjay Raut making those claims that 50 crore rupees is being offered, 15 crores of which is being offered at first. Sanjay Deshmukh as well as part of that. And then we have Nagesh Patil Ashtikar, the third such MP, and Om Raje Nibalkar as well. So that makes it 4, and then we have Bhau Sahib Vakchare, the number 5 MP who is wanting to switch sides, and Sanjay Jadhav as well, making it 6 MPs, and that's the claim that is being made. However, we have Abhishek, my colleague, joining us to get us the latest on this. Abhishek, you know, from what we are picking up, from what was being said in that press conference, is that not all these 6 are wanting to switch sides. In fact, some of them have gone ahead and, sworn on their face, whether it's Sai Baba and others, in order to ensure their loyalty and wanting to go through that test of loyalty and, you know, pledge their allegiance with the Uddhav faction itself.
11: See, definitely, you know, we can clearly see the split at this given point of time where the press conference was addressed. We saw 9 out of 3 MPs present over there. In fact, Sanjay Raut also praised Raja Bahu Waze, who is the MP from Nasik, for being loyal to Uddhav Thackeray and directly attacking the other MPs, the rebel MPs specifically, who didn't turn out at the press conference, and directly hitting out at them and making a point up there that why don't you resign and, you know, choose your own path, because you guys have been elected on the symbol of our party and at the same time on the face of Uddhav Thackeray and Balasaheb Thackeray. But we'll have to understand the number game out here and why the process has been delayed currently, because we require 6 MPs out of the 9 to avoid anti-defection law and to form a specific bloc and then later merge into Shiv Sena. And currently, out of the 2 MPs who are certainly in talks currently are uncertain to go ahead, though they have said that yes, they are with the rebel camp, but it is yet not materialized. So definitely a delay in the process can be clearly witnessed through the sources which are which have told us, and definitely it might materialize. On the other side, the Uddhav camp is using all its legal methods
3: Right. Is legal options being weighed in as well? Abhishek, thank you so much for getting us those details. Let's just talk about what has been written by the Uddhav faculty.

0: All right, our top story now in the split in the Uddhav Shiv Sena. And now Uddhav loyalist Sanjay Raut has stoked a huge controversy after he abused the rebel MPs. That was at a press conference that was held earlier today. Sanjay Raut abused the rebel MPs using very abusive and expletives against them. UBT MPs on cam. Raut's abusive rant now faces flak, with the BJP hitting out at Sanjay Raut, saying that abusing and insulting MPs is not right. Remember, the big story is the split in the Shiv Sena and Operation Tiger, where MPs are being broken away from the Uddhav Thackeray Shiv Sena. However, BJP hitting out at Sanjay Raut over the expletives and the abuse during his press conference, saying MPs don't have faith in the UBT leadership. The Uddhav camp, however, backs Sanjay Raut. Anil Desai, another MP who is loyal to Uddhav Thackeray, says these are not slangs. They're not aimed at anyone. That he was abusing while talking. He wasn't abusing the MPs per se.
1: जो भी बातें बोली जाती हैं, स्लैंग्स होती हैं, या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा हूं।
2: देखो, संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे, वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें, पार्टी में, कि एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। और इसके ये बहुत बहुत दिनों से चल रहा होगा, इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते।
0: Well, let's go across to Sujata for more. And Sujata, in the larger scheme of things, this is, you know, a side controversy. But yes, BJP raising the point that Sanjay Raut abused during his press conference.
3: Well, yes, and we know that Sanjay Raut, this is not the first time that he's hurled abuses at those people who left his party. Even back in 2022, we saw a similar of such nature activity by Sanjay Raut. And this time, not just the BJP, but also the Shiv Sena is hitting out at him, stating that these derogatory and abusive remarks can really hurt the sentiments of the party workers. And the way he has hurled abuses, this can go on to become a controversy. Now, we know that six of the rebel MPs are required for the Shiv Sena split, the UBT split to happen, out of which the letter has been given. But who are all they is an important question. While we spoke to Sanjay Dina Patil, he stated that he is yet with the Shiv Sena UBT and he will not leave the cadre. However, on the other, his phone is still not reachable. So somewhere it is a lot of happening, not only in Delhi, but also here in Mumbai, where it is also agitation in the Shiv Sena UBT workers that too have intensified after after a potential split that are on the cards for Uddhav Thackeray. While on the other, that tomorrow the meeting that has been called by Uddhav Thackeray, who all are the MPs who attend it, who all are not going to attend it, is going to be important. Will the anti-defection law be applicable in revoking the 10th schedule of the constitution is also that will be decided in the coming days. But yes, a big split for the Shiv Sena UBT, the second split after 2022 that we see is happening. And of course, that could affect Uddhav Thackeray's future reign in politics in the future. Back to you.
0: All right, thanks so much, Sujata. So big challenge for the Uddhav Shiv Sena. Now, Uddhav loyalists met with the Lok Sabha Speaker Om Birla, because remember, it all boils down to what Om Birla decides about these breakaway factions from Trinamool Congress to Shiv Sena. Raut, Anil Desai and Arvind Sawant met with the Lok Sabha Speaker, and they have said, we have faith in the UBT MPs, and they have all been asked to attend a Thursday meeting, at the same time saying that 50 crores is being offered to them.
4: संजय राव जी हमारे साथ हैं. संजय जी, बस एक सवाल, आप लोग स्पीकर से मिलकर आए
5: हैं, क्या कहेंगे आप? संजय राव जी, आप जानी से एक बार
4: स्पीकर साहब से हमने इतना ही कहा है, आता है शिवसेना का नाम लेते
5: जी सर,
4: नियम और कांग्रेस जो लोग बोल रहे हैं कि हम बागी हैं, या हम अखबार में पढ़ रहे हैं या चैनल पर देख रहे हैं, हमारे तक अब तक कोई आया नहीं है कि हम बागी हो गए. आपके पास अगर कोई आता है तो हमने पहले ही एफिडेविट दाखिल किया.
6: जी हमारे साथ हैं अरविंद जी, अभी लोकसभा अध्यक्ष के साथ आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ लोकसभा स्पीकर को आपने उस चिट्ठी में?
7: हमने स्पीकर साहब को निवेदन दिया कि बाहर जो बाजार में कहा जा रहा है, पता नहीं आपके पास आए कि नहीं आए, तो अगर आ भी गए, अगर सही भी है खबर, अगर समझ लिए, तो क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी? हमारी संविधान में क्या प्रावधान है? कानूनी प्रावधान क्या है? उस प्रावधान का अमल इतना ही कहना.
6: अनिल देसाई इज विद मी. अनिल जी, आप लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर आए, क्या कुछ उस चिट्ठी में था?
8: हमारी चिट्ठी में यही था, इस केवियट के तौर पर हमने दी है कि भाई अगर कोई ग्रुप आपको आके मिलता है हमारे यहाँ से, तो आप उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचें, हमको मिले व्यवस्था ना दें, क्योंकि कायदे में जो प्रावधान है वो अलग है और गुट को नहीं दे सकते. गुट कैन नॉट मर्ज.
6: सर, पूरी पार्टी मर्ज होने के लिए 6 का नंबर चाहिए.
8: पार्टी तो पार्टी मर्ज होगी तब होगा, ग्रुप नहीं हो सकता है. ये प्रावधान है, इट इज शेड्यूल 10.
6: क्या कुछ आश्वासन दिया गया सर स्पीकर की तरफ?
8: स्पीकर की तरफ से जरूर देखेंगे करके, उनके हाथ में पूरा अमल करने का अधिकार उनके पास है, व्यवस्था देने का अधिकार है, और हमको पूरा भरोसा है लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी के ऊपर और हमारे सांसदों के ऊपर भी. ऐसी कोई
6: कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है आपको लगता है? तमाम सांसदों को सब आएंगे सब एक साथ
8: आएंगे.
0: All right, let's go across to Aishwarya now for more. He's been tracking all these developments. And Aishwarya, will it finally all become clear when that parliamentary party meeting of the Uddhav Shiv Sena takes place?
9: Well, that's tomorrow at 11 a.m. in the parliament. The parliamentary party meeting has been called up as far as the Shiv Sena Uddhav Thackeray camp is concerned. They have called all the 9 MPs. The letters have been sent. The whip has been issued to each and every MP.

0: functioning. What will you comment on that?
1: Yeah. Is any human happy with anything?
0: Right.
1: General human tendency to be not happy. पुणे में
2: अच्छा पुणे में ही है तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है सर उसमें आप दिल्ली आएंगे या अभी वहीं रहेंगे आप?
1: नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्यों चला रहे हैं आप सब लोग।
2: अच्छा तो आप
1: पुणे में?
2: आप पुणे में ही है। आप उद्धव
1: जी, आपके माध्यम से ही मैं जान पा रहा हूँ कि दो एमपी आए, तीन एमपी आए, मैं तो हूँ पुणे।
2: अच्छा आप पुणे में ही?
1: आपकी वजह से क्या हुआ पता भी नहीं चल रहा कौन सा न्यूज सही है और कौन सा गलत है। सर न्यूज ही चला रही हुई।
2: तो सर अभी आपका क्लियरिटी क्या है, आप उद्धव के साथ ही हैं या आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो सही है?
1: मैं अभी फिलहाल मेरे पिताजी का जो मर्डर केस है जी, उसका डिसीजन आने वाला है 20 तारीख को, उसके इसमें हूँ।
2: अच्छा लेकिन पार्टी के साथ ही है अभी या?
3: Now, Shiv Sena leaders and leaders of other parties have also reacted to all these developments. Listen in to what they've had to say.
4: जो शिवसेना के जो रिबेल में हैं, जो यूबीटी सेना के जो भी पार्टी स्विच करने की इनकी बात चल रही है आपके साथ?
5: अच्छा अभी कहाँ दिख रहे हैं तुम?
4: सर वो कह रहे हैं कि दिल्ली भी आए हुए, एकनाथ शिंदे श्रीकांत शिंदे के घर पे मिलेंगे भी। और
5: मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में।
4: सर ये संजय राव जी ने ये भी बोल दिया कि 15 करोड़ दिए जा रहे हैं इनको पार्टी स्विच करने के लिए।
5: संजय राव तो रोज अलग अलग बातें कह रहे हैं ना, कल रात को 15 करोड़ बोला, आज कुछ 50 करोड़ बोल रहा है।
4: ऐसी सर फिर आप कह रहे हैं कि कोई टॉक्स ही नहीं हो रही है?
5: उसे तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, ऐसी तो 2 साल से ये खबरें आ रही है कि बाबा ये लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में।
4: सर फिर वो जो ऑपरेशन टाइगर की रूमर्स हैं उस पर आप क्या कहेंगे?
5: वो तो 2 साल से चल रहा है ना, रोज न्यूज में आ रहा है, हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ ना।
4: अच्छा ये भी सर फिर आ रही थी न्यूज की उद्धव ठाकरे की लीडरशिप से
5: ऐसे ही वही रहेंगे वो संजय राउत और अरविंद सावंत को मालूम जो कुछ सुबह से चालू है।
4: अच्छा आपकी भी इंटरनल कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं हो रही है?
5: नहीं, इंटरनल डिस्कशन कुछ भी नहीं।
4: तो जो दिल्ली की मीटिंग्स हैं जो सारे यहाँ पे आए हुए हैं?
5: नहीं, कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में।
4: अच्छा तो मौजूद या किसी पे भी कोई अभी बातचीत आपके साथ?
5: नहीं, कुछ भी नहीं, तो 2 साल से चल रहे हैं ना, 1.5-2 साल से रोज न्यूज आती है इसी तरह की, वैसी भी आज भी वैसी ही रहेगी न्यूज़, ऐसा मुझे लग रहा है।
4: सर आप कह रहे हैं 2 साल से चल रहा है, इसका कोई रीजन है कि ऐसे क्यों चल रहा है? ये पहले भी हमने देखा था 2022 में
5: जो यूबीटी पार्टी है उसमें जो अनबन चालू है वहां से लोग खुश नहीं है, तो ऐसे न्यूज आ रही है।
6: संजय राउत ये सब बौखला गए लोग है, एक तरफ से हमारे आम खासदार हमारे एमपी फूटे ने ऐसा कहते हैं, एक तरफ से उनको गाली देते हैं, कभी बोलते वो बीके गए, ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा है मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही, अभी पता नहीं कल क्या होगा ये हमें भी पता नहीं है, कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले तौर पर सामने आने वाली।
7: भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे, उद्धव जी जाने और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने, भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गली से, इसलिए इसका रिलेशन केवल उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी से है, तो बीजेपी उसको क्यों घसीटे बीजेपी को?
3: All right, some breaking news now coming in, and after Operation Bengal to split the Trinamool Congress and then the Uddhav Thackeray Shiv Sena, now there's been speculation about attempts to split the Samajwadi Party, and a minister of Uttar Pradesh, Rajbhar, has made a claim that in fact the Samajwadi Party, the entire party is going to join the BJP, but now this has been rubbished by Ram Gopal Yadav, who had been named by OP Rajbhar, who said that Ram Gopal Yadav has submitted a letter to Home Minister Amit Shah. NDTV spoke with Ram Gopal Yadav, who's dismissed and rubbished all these claims. Listen in to what he said.
4: तो मैं कह रही थी जी सर, ये जो ओपी राज बिहार ने बोला ये समाजवादी पार्टी का, उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि आपने लेटर दिया है अमित शाह जी को कि समाजवादी पार्टी में स्प्लिट हो रहा है।
8: ऐसा है, अमित शाह जी को आप पूछिए कोई लेटर दिया है मैंने, नंबर एक बात। नंबर दो ये कि ओम प्रकाश राजभर की बात को इस देश का कोई आदमी गंभीरता से लेता नहीं है। वो इस तरह की हमेशा बात करते हैं जैसे सन्निपात हो जाता आदमी को, तो उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या कह रहा है और उसका अर्थ क्या है। तो सन्निपात की स्थिति से गुजर रहा है वो, अपनी पार्टी तो बचा नहीं पा रहा है, उसकी पार्टी सब समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहती। वो रामगोपाल के बारे में कह रहा है, तो रामगोपाल ने अगर कोई चिट्ठी दी है तो माननीय गृह मंत्री से पूछिए कोई चिट्ठी लिखी है रामगोपाल ने।
4: जी सर, फिर आप क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई प्रॉब्लम्स अभी आज सच नहीं है, कोई फैक्शन?
8: कोई प्रॉब्लम ना है ना होगी, ये बातें करने वाले सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम करते हैं और ये सब गलत साबित होंगी, जनता इनको गालियां देगी।
3: All right, let's go across to Ajay Dubey now for more on this entire story. And Ajay, we just heard Ram Gopal Yadav there absolutely dismissing and trashing these claims made by Rajbhar, who is a minister in the UP government, in fact claiming that the entire Samajwadi Party is ready to split and join the BJP, saying that after Trinamool Congress and Shiv Sena, now Samajwadi Party is next.
9: Definitely, I just had word with Ram Gopal Yadav and he was saying that nobody takes Om Prakash Rajbhar seriously, not even his family. So whatever claim Rajbhar is making, is it going to be a serious thing? I am joined here by the leader, workers of Samajwadi Party. भैया आप लोग बताइए, Om Prakash Rajbhar जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत से सांसद हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी, कैसे देखते हैं उनके बयान?
10: उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है, समझ रहे हैं आप? और आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके खुद ही जितने भी एमएलए जीत के आए हैं वो खुद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वो क्या क्या शाम को कहेंगे, क्या सुबह कहेंगे, उनको पता नहीं है। आप उनकी बात करते हैं, पियरका चचा की, जो खुद पता नहीं है कि कल किस पार्टी में थे, आज किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, कल किसके साथ खड़े होंगे, खुद लार टपकाए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने के लिए।
9: आप कह रहे हैं राजभर खुद
10: आना चाहते हैं भाई?
9: ये इतना वो क्या, Om Prakash Rajbhar इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, रामगोपाल यादव जी का नाम ले रहे हैं, आपको लगता है रामगोपाल यादव जी कभी वो जरिया बनेंगे कि सपा के सांसद टूटे?
10: रामगोपाल यादव जी की पैर की धोन के बराबर नहीं है वो, और उनके कितने विधायक उनके साथ खड़े हैं ये मीडिया के लोग आप सब जानते हैं।
9: क्या लगता है रामगोपाल यादव कभी जरिया बनेंगे सपा को टूटने का?
11: कहां वो, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो तो शाम को कुछ भी पीते हैं, सुबह कुछ भी पीते हैं, तो उनको तो हम लोग तो मेढक की तरह देखते हैं, वो तो मेढक हैं एक तरीका से।
9: Om Prakash Rajbhar को
11: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
9: आप बताइए भैया, लग रहा है रामगोपाल यादव जी तोड़ेंगे?
12: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं तोड़ेंगे। वो पियर का चाचा की खुद की बात का भरोसा नहीं है। अभी चार दिन पहले कहा करते थे, ए योगी तुझको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती, और जरा भी जगह मिली और पियर का चाचा ने पैर टेक दिए और जाकर के वहाँ मलाई खाने के लिए पहुँच गए। पियर का चाचा कोई भरोसा नहीं, क्या बात करते हो आप? Om Prakash Rajbhar जिनको कहते हो, Om Prakash Rajbhar की बात का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहें और कहां चले। अभी उनकी बात का ये कहते मंत्री हैं और इन्होंने पंचायत चुनाव की डिस्पैच घोषणा कर दी और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, पियर का चाचा कुछ पता ही नहीं है।
9: तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आई एम हियर जॉइंड बाय द वर्कर्स ऑफ समाजवादी पार्टी एंड दे आर यू नो अक्यूजिंग Om Prakash Rajbhar, व्हाट देयर लीडर इज सेइंग दैट ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, नोबडी टेक्स हिज thought seriously, and workers are also saying that nobody takes Om Prakash Rajbhar seriously.
3: Right, those SP workers absolutely outraged and in true UP style denying all these allegations that are being made by OP Rajbhar. Well, moving on now to news coming in from Jharkhand, and unidentified assailants allegedly hurled petrol bombs at an RSS office in Ranchi in Jharkhand. This took place at around 12:36 a.m. It triggered security concerns in the area. There you can see the CCTV visuals which show that two individuals arrived on a vehicle and then they threw these petrol bombs at the premise. premises, fleeing from the spot. Police have launched an investigation and are scanning CCTV footage to identify these attackers and determine the motive behind this attack on an RSS office. The BJP strongly condemned it, calling it a direct attack on the RSS and alleging a larger conspiracy behind the assault. BJP leaders have also questioned law and order situation in Jharkhand and demanded the strictest action against those who were responsible. One of the petrol bombs exploded, the other did not.
13: रांची के निवारणपुर स्थित यही वो आरएसएस का दफ्तर है जहां पे रात करीब 12:30 बजे दो हमलावर आए थे और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया और यहां पे पेट्रोल बम फेंक के चल गए। जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दो व्यक्ति हैं और उनके द्वारा फेंका गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो जाँच अधिकारी हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यही वो जगह है जहां पे ये बम फेंका गया है, जिसका अवशेष आपको दिख रहा होगा। ये पेट्रोल बम था जिसका इस्तेमाल किया गया है।
14: एक छत के ऊपर और एक नीचे दो पेट्रोल बम से हमला हुआ। दोनों के कारण कोई क्षति नहीं हो पाई, ईश्वर की कृपा से हम लोग बच गए। एक ऊपर फटा है, नीचे वाला डिफ्यूज हो गया।
13: जिस समय ये बम फेंका गया, क्या दफ्तर में लोग थे?
14: जी, सब लोग सो रहे थे। यहाँ पे प्रांत प्रचारक और भी कई प्रचारक और कार्यकर्ता जो जो कार्यालय में रहते हैं वो सब यहीं थे।
15: We have seen the kind of vitriolic statements being made against RSS recently by certain people and then this attack happens. One should not link the two, but one should be very clear that there is some kind of poison and vitriol that is being spread about the RSS and that has dangerous consequences. There should be a complete probe, a deep probe, and then we should unearth who is the mastermind behind such kind of things and what is the objective. Why such intolerance and hatred and nafrat is being peddled by certain elements against nationalistic organizations like RSS.
3: All right, with that, time for us to slip into a short break. On the other side, we'll get to the latest on the G7 summit in France. Stay with us.

0: much confident and sure that no MP is going anywhere. All MPs stand strong with him. This, in fact, he has spoken exclusively to NDTV just before his very important press conference. Also, let me show you these pictures of this press conference as well. This is also very much important. And also, let us talk about what Sanjay Raut has spoken while speaking exclusively to NDTV. He has stated that Uddhav Thackeray has worked a lot for every MP and has stood every time for them. And the rebels will not get the numbers they want, and they will keep on struggling for numbers. This they have been doing since long, but still the MPs have been standing strong with Uddhav Balasaheb Thackeray. All eyes on this press conference. We'll be getting you all the updates from the ground zero.
1: Tejshree, stay on with us as we talk about the speculations doing the rounds as far as Operation Tiger that continues to be in motion, with Eknath Shinde's camp claiming that as many as 6 of the 9 Uddhav Thackeray camp MPs could possibly be switching sides. Amid the reports, a parliamentary party meeting of the Shiv Sena UBT has been called in the parliament, and all MPs have been asked to come for the meeting. Let's get
2: phone call. आपको आया था क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है.
3: मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं.
2: आपको कॉल आया था?
3: नहीं, किसी का नहीं है. शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं.
2: लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे?
3: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है. मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला.
2: दो दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी. कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे. उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं. उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था?
3: नहीं, कुछ नहीं. वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी.
2: एक सवाल ये भी है ना सर, कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो व्हिप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या
3: मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक. मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं. मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ. हाँ. अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में.
2: इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे?
3: मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूँ, कल भी रहूंगा. बस
2: तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे?
3: मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है.
2: अच्छा अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने?
3: मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो.
2: अगर कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे?
3: नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है? अभी मैं तो साहब के साथ हूँ तो मैं उनके साथ रहूंगा.
2: संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए. आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था?
3: मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई बात ही नहीं हुई तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर? मेरे से बात ही नहीं हुई.
2: जो लोग छोड़ करके जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
3: मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ. उद्धव जी उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कहना है तो वो कहेंगे, मैं क्या कहूँ.
2: क्या पार्टी में नाराजगी थी?
3: नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ. मैं तो अभी यहाँ हूँ और उनके साथ ही रहूंगा.
2: सर थोड़क्यात मराठी करूया. सर तुम्ही इथं आला आहात, मुंबई वरन नाशिक वरन दिल्ली आला आहात, काय उद्देश आहे? म्हटलं जात आहे की
4: करंटली इन दिल्ली. Okay, and sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
5: Tired of the press and tired of all the speculations.
4: Okay.
5: What is going to? What if something is to happen? It will happen. What is? What?
6: Good afternoon and a warm welcome to all our viewers. Thanks for tuning in to NDTV. This is the Southern View, where me and my colleagues will take you through the top stories that's making news from the southern part of India. Joining me on this broadcast is Vijay from Tamil Nadu. We also have Ashwin from Kerala. We'll have my other colleagues join in through the course of the next half hour. First up, there's news coming from Karnataka. This is the Karnataka's IT minister, Priyank Kharge, who's taken objection to the center putting a ban on the Telegram app because of the previous leaks of the NEET examination papers through this app. He's saying that the genuine users are really taking a hit, and this is a band-aid sort of a solution that's coming to the fore from the center, and this is not actually a solution

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
2: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: The focus of the world over the next several days is going to be on Switzerland and France. France, because of the G7 summit, that's where Prime Minister Modi

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील।